जान सब यात्री सब यात्री सब यात्री कुन मंदिर में जाने हो मजाने हो मजाने हो कुन सामग्री पूजा करने करने करने साथ कसरी लाने हो